0: afternoon everyone, this is Nidhi Datta from East FM और मैं आशा करती हूँ कि आज की स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी. तो कुछ अरसे के बाद मैं वापस आ रही हूँ East FM पर and what an exciting day for me to restart this show because today I am at Oshwal Center and दूर से थोड़ी थोड़ी दिवाली की खुशबू आनी शुरू हो गई है. दिवाली से पहले नवरात्रि की काफी सारी खुशबू आनी शुरू हो गई है. तो अगर आप 4 बजे की चाय पी चुके हैं और मेरी कहानी सुन चुके हैं एंड नाउ आप थोड़ा तरोताजा फील कर रहे हैं देन प्लीज कम एंड मीट अस एट ओशवाल सेंटर वेयर UUF लेबल्स हैव ब्रॉट दिस ब्यूटिफुल एग्जिबिशन एंड व्हेन आई वेंट इनसाइड सबसे अच्छी चीजें जो मुझे एकदम से फेस्टिव मोड में ले गई वो थी तोरंस which I thought there will be clothes and jewelry and all but I also saw a lot of Diwali decorations and beautiful diyas and you know all sorts of things for Diwali so now is the time when you can come and start browsing because I think it's just about 10 days now for Diwali or maybe less oh sorry for Navratri or maybe less So now is the time when you come to Oshwal Center, meet us here. The East FM presenters are also here and we're having such a good time. So chaliye, main milti hoon aapse abhi thodi der mein phir se and I'm going to bring in some vendors who have come all the way from India and have brought some beautiful cottons and embroideries and all kinds of glittery stuff for the upcoming Diwali and Navratri season.
1: Kenya's premier. You are listening to Ek Kahani, narrated by Nidhi Datta, produced by Edwin Wanmuro.
2: Great songs that make your day.

0: वैन में भी बहुत उफ उफ हो रहा है बिकॉज हमारी वैन में बहार आई हुई है, नीलोफर है, रहमत है. तो नीलोफर क्या क्या कितनी जेब ढीली करी आज आपने?
1: अभी तक तो मैं काम कर रही थी बिकॉज यू नो वी आर जस्ट लुकिंग अराउंड एंड डूइंग आवर कंटेंट फॉर ईस्ट एफएम एंड यूयूएफ एग्जीबिशन द लेबल्स एंड व्हाट अ कलेक्शन. बट ये तो रिकॉर्ड है कि व्हेनेवर आई कम आई हैव टू बाय समथिंग. रहमत मुझे दूर से देख रही होती है, इसका शुरू हो गया. तो अभी मैं वापस इसके बाद जब अंदर जाऊंगी इज व्हेन आई एम गोना शॉप एंड ओ माय गॉड. बट दैट आई आल्सो हैव सेड इट ऑन एयर बिफोर एंड इट्स अ फैक्ट दैट यहां पे जो डिफरेंट वेंडर्स हैं, वैरायटी है, इट्स सम लाइक यू नो दे आर डिफरेंट कैटेगरीज एंड यू कैन अफोर्ड टू बाय
0: यस
1: विदाउट सेलिंग योर किडनीज.
0: यस, अफोर्डेबल इज द वर्ड.
1: एग्जैक्टली.
0: एंड टेस्टफुल.
1: एंड टेस्टफुल एंड समथिंग दैट यू वुड पिक अप फॉर नॉट जस्ट फॉर फेस्टिव सीजन, फॉर द होल ईयर राउंड. लाइक आई एम अ बिग ज्वेलरी फैन, यू नो, लाइक एंड लाइक देयर इज नो वे आई एम गोना वॉक आउट विदाउट बाइंग अ झुमका एटलीस्ट. सो देयर इज सच गुड वैरायटी ऑफ ज्वेलरी फॉर एवरी यू नो कैटेगरी एंड बजट. सो दैट्स फॉर श्योर. साड़ीज आई हैव सीन दिस ईयर. आई हैव गॉट दिस होल साड़ी का क्रेज. सो आई एम डेफिनेटली पिकिंग अप वन साड़ी एंड देयर सूट्स. आई हैव सीन समथिंग फॉर मंथ्स.
0: सो समवन वेयरिंग अ साड़ी व्हिच लुक्स लाइक, उसकी लुक जो है ना वो चनिया चोली वाले काम की है. जो क्या कौन सा काम बोलते हैं, मिरर वर्क. और वो पूरी साड़ी पे मिरर वर्क.
1: और यहाँ पे नवरात्रि का कलेक्शन देखा, जस्ट द स्टॉल इन द स्टार्ट हैज सच अ ब्यूटीफुल नवरात्रि कलेक्शन, कलरफुल एंड इजी टू वेयर, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, यू नो व्हाट आई मीन. हमको तो नवरात्रि में काम भी करना होता है, तो आई थिंक वी लुक फॉर समथिंग लाइक दैट. बट दे डेफिनेटली हैव फैंटास्टिक कलेक्शन एंड यस दे आर ऑल्सो देयर टुमारो. सो मेक श्योर यू मेक योर वे टू ओशवाल सेंटर एंड यू नो यू व्हाट, यू गोना हैव अ ब्लास्ट.
0: यस. एंड रहमत, what did you shop?
2: So you know, I saw an outfit by the way, Nilufa, an Indo-Western one.
1: Oh, nice.
2: So like a nice dhoti and then a really nice, yeah,
0: no, I really that is very much style. Love, yeah? That the jackets and the dhotis,
2: yeah? Correct. So yeah. I saw that and I'm like, I'm going to go and check that out, and it's not so expensive, about 6,000 bob.
1: Yeah, so that's not bad at all.
2: Absolutely. And 6, a whole outfit. Yeah, that's actually nice because you see the embroidery work, it's actually handmade.
0: Oh,
2: so now that egg jewel that they put on it is actually handmade. So I'm like, yeah,
0: you know, the reel that we did for our digital, and we were talking about fashion. For me, the moment something is handcrafted,
2: your heart is there.
0: Yes,
1: which is a fact. I've seen you wearing. You know, I've seen you wearing stuff like that.
0: Yeah, the handcrafted, very breathable fabric, ho, cottons, ho, linens, ho. Linen
2: connection. I've seen a store. Chale.
0: Chale. So we are all waiting for you here. आपने देख लिया, हम तीनों के tastes different है, कहीं कहीं same भी है, और हम सबके लिए कुछ ना कुछ है. So meet us and come and meet us here at the van and of course in the exhibition.
3: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: Coast FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Coming in live from Oshwal Center at Chand Rami Hall, this is Niti Datta on East FM, Kenya's premier Asian mix. And here we are at UUF Labels Africa. And bahut ronak hai yahan pe. Aur aap khud hi mujhe bataye ki ghar ki ronak kisse hoti hai. Ghar ki ronak hoti hai betiyon se, bahuon se, behnon se, isn't it? To ye aane wale jo festival season hai, isme apne ghar ki ronak ko aur kaise rangeen banana hai? अगर वो आप करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा ओशवल सेंटर. एंड जेब ढीली करनी पड़ेगी लेकिन ज्यादा नहीं, बिकॉज हियर वी हैव दोज ब्रांड्स विच आर ब्यूटिफुल, टेस्टफुल एंड येट अफोर्डेबल. तो आई होप आप सब यू आर ऑन योर वे टूवर्ड्स ओशवल सेंटर. एंड ऑफकोर्स ओशवल सेंटर बींग सच अ ब्यूटिफुल वेन्यू फॉर दिस, बिकॉज देर इज नो डर्थ ऑफ पार्किंग. इट इज an open space, and you know, I mean, you go in and you go to other parts of Oshwal Center and you can have your walk here and anything that you want to, you know, relax on a Saturday afternoon. So looking forward to you coming to Oshwal Center and coming and meeting us here at the van at East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: More of the beats you dance to, but East FM, Kenya's premier Asian mix. Asian mix.

0: all vendors. I'm very happy. Thank you.
1: नहीं, आपका बहुत ज्यादा आपकी मेहनत भी है इसमें एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट यू नो
0: जब तक कोई बैकबोन नहीं होता कोई इवेंट सक्सेस नहीं होता. मेरा बैकबोन ईस्ट एफएम है जो मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट करता है.
1: दैट इज सो नाइस एंड आई थिंक ईस्ट एफएम हैज अ बॉल ऑफ टाइम. एवरी टाइम यू ब्रिंग यूएफ लेबल एग्जीबिशन आई थिंक वी ऑल लव बीइंग हियर. वी लव बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्रांड.
0: रहमत की रहमत होती है मुझ पे.
1: यस, रहमत की रहमत होती है. एब्सोल्युटली. एंड देन नाउ टुडे वाज द सेकंड डे एंड टुडे टिल व्हाट टाइम इज द एग्जीबिशन
0: ऑन? 8 o'clock. जब तक पब्लिक आना चाहे तब तक हम खुला रखेंगे.
1: ओके,
0: ऑलमोस्ट वेलकम.
1: So all of you are welcome today till 8 p.m. and then tomorrow. Tell us.
0: Tomorrow our is last day, morning 10 o'clock to till 8, and please come. मत मिस करो क्योंकि हम खाली इंटरनेशनल को प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोकल को भी प्रमोट कर रहे क्योंकि मुझे चाहिए हमारा इंडिया, यहाँ पूरा इंडिया जाने की जरूरत ना हो. यहाँ आओ, शॉपिंग करो और इंडियन इंडिया के रेट पे ही मिलेगा आपको. डोंट फील कि यहाँ एक्सपेंसिव है. हम सब पब्लिक को टारगेट करते हैं.
1: Absolutely. मैंने पहले भी ये आई हैड सेड दैट यू नो इट इज टेस्टफुल, इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट
0: एवरीवन कैन अफोर्ड.
1: यस, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वाइब. यूएफ लेबल के एग्जीबिशन के साथ ही नवरात्रि और दिवाली की वाइब शुरू हो जाती है. सो यस,
0: हेलो रे हेलो, कमल के हिसाब से, कमल की लैंग्वेज में हेलो रे हेलो.
1: एब्सोल्युटली. सो लाइक सुधा सेड, यू स्टिल हैव अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर वी क्लोज द एग्जीबिशन टुनाइट एंड देन ऑफ कोर्स फ्रॉम टुमारो 10 a.m. दिस प्लेस विल अगेन बी देयर विल बी हसल एंड बसल. सो सी यू टुडे और टुमारो व्हेनेवर इज कन्वीनियंट, बट डू कम और यहां से थोड़ी बहुत रौनक अपने घर जरूर लेके जाइए.
0: थैंक यू.